सारे हैं इंडिया से, यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: ये मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

मजनी हो, सादिसी हो, आशिकी हो, मुझे पता है तुम किस गली हो, किस मोहल्ले जात की हो, मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, दिखती तो आजाद भी हो, पर दुनिया तो तुम्हीं से चलेगी, मैं एक लड़का हूँ तुम मेरे बाद भी हो।

हसीन है, मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 4090 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

संभल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

0: अंश जल्दी आ। क्या हुआ? अरे जल्दी आना,
1: ये देख, ये तेरा एक्स है ना, इसका नया वीडियो आया है।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

न जाना कभी ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? मूवी देखी थी, पाव भाजी खाई थी, पंजी गए थे.
2: रॉन्ग. 2 अक्टूबर को गरबा नाइट है. अरे भूली गया, आ डेट तो याद रखवानी छोए. गरबा लवर्स, आर यू रेडी? ऑन ऑक्टोबर बीजी रिधम अने रास लेने आवे छे गरबा नाइट. चनिया चोड़ी अने केडियो रेडी राखो. एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल. जॉइन अस फ्राइडे ऑक्टोबर 2nd एट 7 PM एट हवेली एपेक्स. डांस टू द इनक्रेडिबल बीट्स ऑफ अमृता मंके एंड निमेश नगर विद लाइव म्यूजिक, डिलिशियस फूड, फैमिली फ्रेंड्स एंड रात भर गरबानी मौज. Early bird tickets only until September 7th.
1: Tickets on Sulekha or Check the Rhythm and Ras Flyer on Radio Naira's Facebook, Instagram or RadioNaira.com. One beat, one circle, one community.
3: At Triangles Biryani in Morrisville, we are elevating the art of biryani with unmatched quality and flavor. From the finest hand-picked spices to the freshest vegetables and premium meats, every dish is a masterpiece. Don't miss our signature Kuku Pulav, a culinary delight available with chicken, goat, paneer, shrimp or fresh vegetables. It's fresh, flavorful and exclusive to the East Coast. Start your feast with sizzling appetizers, perfectly paired with your favorite hot drinks. Indulge in our weekday unlimited thali, a bountiful spread available in vegetarian and non-vegetarian options. Unwind with our signature cocktails like Pushpa the Fire, Classic Margarita, Old Fashioned, Negroni or Jungle Bird. Visit us today at 4121 Davis Drive, Morrisville or call 919-377-1029. Triangles Biryani. Fresh, flavorful.
4: Join the Morrisville Chamber of Commerce on Wednesday, October 1st from 4:30 to 6 PM for Life Sciences After Hours Unplugged at Horseshoe at the Hub RTP. Network with industry professionals, innovators and leaders and enjoy a lively panel and Q&A on the power of storytelling in life sciences. Visit morrisvillechamber.org to register. Media partner, Radio Naira.
5: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

साउथ एशिया रेडियो 10 टू 12 नून एवरी संडे, संडे के संडे। You want music from all countries of South Asia? Listen to Geek

0: तारे जमीन हैं तो मेरा इश्क फलक है। समा फरमाए कि तारे जमीन हैं तो मेरा इश्क फलक है, और सदियों से गुल हैं तारे धोखे की चमक है। सभी जानते हैं खातिन हजरा कि बहुत से सितारों की चमक दमक सिर्फ हम देखते हैं, हालांकि वो चमक दमक है नहीं, यानी कि हम तक पहुंची है अब आकर। तारे तो शायद बुझ चुके हैं हजारों हजारों हजारों साल पहले, लेकिन उनकी रोशनी अब पहुंच रही है हम तक। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, तो मैं अपने प्यार को सितारों से क्यों मिलाऊं बोला। हम नहीं मिलाते अपने प्यार को सितारों से, मेरा प्यार तो सच्चा है। प्यार सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। ये सच बात है, कितना पुराना नगमा है और ना ख़त्म होने वाला प्यार हमारा सच्चा। ये देखिए, हम हर इतवार को आपकी तलाश में, आपकी मोहब्बत में, आपकी कशिश में यहाँ आते हैं। यही प्यार की सच्चाई है। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि वी आर योर होस्ट अफरोस्ता जान कॉलवेल एंड रवि चिरकुड़ी। दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश।
1: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
2: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
0: Purane purane gaane aur naye naye ashar ek dusre mein milakar hum aapki khidmat mein पेश करते हैं। बस इतना कीजिए कि हमारे पास बस फरमाइश आने की देर है। जैसे ज्योति करीब की ये फरमाइश आई थी अभी अभी जो आपने सुनी, इतना है तुमसे प्यार मुझे। क्या बात है, क्या गाना, क्या नगमा है, वाह। और अब अगली फरमाइश मोहतरमा ज्योति करीब की ही है। अब ये बड़ी शोख, बड़ा अच्छी, बड़ी खूबसूरत फरमाइश है। यकीन नहीं आता कि इस तरह के भी गाने लिखे गए। जाते हुए कहता था कि मंदिर में मिलेंगे, जाते हुए कहता था कि मंदिर में मिलेंगे, मेरा कसूर क्या है जो वो राह में मिल गए। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

मंदिर के लिए जग में दीवाने बहुत से हैं। अरे मंदिर के लिए जग में दीवाने बहुत से हैं, पर राह में मंदिर के मैखाने बहुत से हैं। खातिर वसरार इंदी वर का कलाम था कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी थी। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। तो जनाबे वाला फिल्म का नाम था हीरा, 1973 की ये फिल्म थी और आवाज़ें थी लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी की ज्योति करी साहिबा की फरमाइश पर। और इससे पहले वाला नगमा जो आपने समाप्त फरमाया वो भी उन्हीं की फरमाइश थी, हसरत जयपुरी के कलाम के साथ शंकर जयकिशन की मौसीकी। सूरज वाह 1966 की ये फिल्म थी, मोहम्मद रफ़ी एंड सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें। ज्योति करीर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी, मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश भी तो मौजूद है एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना से। ज्योति करीर की फरमाइश आई थी मॉरिसविल नॉर्थ कैरोलिना से। बस मैं इतना कहूँगा, मैं कुछ इस पर कह नहीं सकता जो नगमा आपने भेजा है मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी, मोहतरमा कंचन लाल जी। तो उस पर सिर्फ इतना कहूँगा कि अंग अंग सारा बह गया पर दिल यहीं रहा। देखें आप जरा गौर कीजिए क्या कहने चाह रहा हूँ। अंग अंग सारा बह गया पर दिल यहीं रहा, दिल देश से बाहर के काबिल नहीं रहा।

दिल ही तो है जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ, अरे दिल ही तो है जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ, हम बिक चुके हैं सारे के सारे तो क्या हुआ। खातिन हजरा शैलेंद्र का कलाम, शंकर जैक्शन की मौसीकी, श्री 420 1955 की ये फिल्म थी। मुकेश की आवाज़ में नगमा आपने समाप्त फरमाया, मेरा जूता है जापानी। मोहतरम जनाब चंचल लाल जी, मोहतरम कंचन लाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। और अब हम कहते हैं कि मोहतरमा समृद्धि ठाकुर पीछे कैसे रह जाएं, चैपल हिल से अपनी फरमाइश भेज रही हैं, क्या बात है, वाह। और मैं कहूँगा, दीवाना कहीं जाए क्यों पूछे किसी से पहले, अरे दीवाना कहीं जाए क्यों पूछे किसी से पहले, अगर पूछना था पूछता दीवानगी से पहले। यू आर लिसनिंग टू गीत बजा।

कुएं के पास चाबी कोयल है जेल में। समाज फरमाइए, देखिए हालांकि ये शेर है मगर ये दोहे का रंग लिए हुआ है, क्योंकि दरअसल मैं दोहे भी लिखता हूँ शेर भी लिखता हूँ, तो कभी कभी दोहा शेर की तरह शेर दोहे की तरह हो जाता है। तो क्या हुआ, कौए के पास चाबी कोयल है जेल में, कैसा मजा है देखो कलयुग के खेल में। राजेंद्र कृष्ण का कलाम था ये, जिनकी शान में ये नगमा पेश किया गया। मोहतरमा फरीदा शेख साहिबा, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी, गोपी 1970 की ये फिल्म थी जिसका नगमा था, महेंद्र कपूर की ऊंची बुलंद और ताकतवर आवाज़ में। इसके बाद मोहतरमा पूर्णा गुप्ता साहिबा की फरमाइश भी मौजूद है, लेकिन मैं पहले शेर सुना दूं, देखूं ये शेर आपकी फरमाइश से कितना मिलता जुलता है या नहीं। गैरों के है हाथ दुपट्टा और पगड़ी जाने वाली है, गैरों के है हाथ दुपट्टा और पगड़ी जाने वाली है, और जो हंसते हैं वो ही लूटें अदा जमाने वाली है।

0: वो गुल के रंगो खुशबू पे बड़ी मंडरा रही है। मैं तवज्जो चाहूंगा, वो गुल के रंगो खुशबू पे बड़ी मंडरा रही है, ये तितली आजकल कागज से धोखा खा रही है। आनंद बख्शी का कलाम, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की मौसीकी, दुश्मन नाम था फिल्म का, 1972 की ये फिल्म थी। और साथ साथ किशोर कुमार की आवाज़ के साथ ये कव्वाली की शक्ल में बहुत अच्छा लगा हमको, और चरणजीत तालजन मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश पर। और इसके बाद आपसे बात होगी फिर कि हम जैसे आपसे वादे करते हैं निभाते हैं, क्या आप भी हमसे वादे करते हैं और निभाते हैं? अगर ऐसा है तो बड़ा इंजॉय करेंगे अगले नगमों को। अगले नगमों में वादे वईद की बातें हो रही हैं, यानी प्रामिस, वचन या कुछ भी तरह का वादा। वी आर योर होस्ट सफरोज स्टार जान कॉलवेल एंड रवि चिरिकुड़ी। 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश।
1: एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर दीज वेरी ब्रीफ मैसेजेस फ्रॉम रेडियो नायरा।

0: Myra 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Myra mein kho jao Pakka Desi.
2: Bazaar every Sunday 10 to 12 noon. Carry to Karachi, Rally to Rajasthan, Mumbai to Mombasa, Naples to Nepal, Missouri to Missouri, Niagara to Agra, Alabama to Allahabad, Lahoya to Lahore, Nevada to Noida, Carolina to Kerala, Chicago to Sharpur, Louisiana to Ludhiana, Oregon to Aurangabad, Tashkent to Kasgan, Utah to Eta, Texas to Texla, Virginia to Varanasi, Morrisville to Mauritius, Delaware to Delhi, Oklahoma to Okla, Dublin to Dubai, Baltimore to Butler House, Jarzak to Sharjah, Florida to Murodabad.
3: Hairat zada hain. आई खबर जब बाजार से, अरे हैरत ज़दा हैं, आई खबर जब बाजार से, कागज के फूल महंगे हैं असली बहार से. दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश. वी आर योर होस्ट अफरोज ताज जान कॉलवेल एंड रवि चिरकुड़ी. और साथ में ये भी कहता चलूं द

वादे निभाना मोहब्बत नहीं है, वादे निभाना मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत में कोई तिजारत नहीं है।

साजन न जाने वादा निभाना। अरे साजन न जाने वादा निभाना, बनाना था मलका बनाया दीवाना।

वादे की अहमियत में दिल ले गए हमारा, वादे की अहमियत में दिल ले गए हमारा, दिल दीजिए ना दीजिए वादा तो कीजिए।

सूरत को बिना देखे सूरत ही नहीं कोई। समाज फरमाएं कि कोई रास्ता नहीं है बिना देखे, इतनी बेचैनी होती है। सूरत को बिना देखे सूरत ही नहीं कोई, और वादे से बांधने की जरूरत ही नहीं कोई।

जिद मान के तुम्हारी दिल जो दिया, अरे जिद मान के तुम्हारी दिल जो दिया, और शाम से पहले ही तुमने खो दिया।

वादा नहीं करते हैं निभाने की नीयत से। अरे वादा नहीं करते हैं निभाने की नीयत से, गर नीयत हो निभाना तो वादा नहीं करते।

वो वादे पे वादे किए जा रहे हैं, अरे वो वादे पे वादे किए जा रहे हैं, हम उनके यकीन पर जिए जा रहे हैं।

करके उल्फत मुकर गया कोई, अरे करके उल्फत मुकर गया कोई, मेरे माजी से डर गया कोई, और खोल कर देख दिल का दरवाजा, तेरी चौखट पे मर गया कोई।

वादा किया था तुमने आओगे दिन ढले, अरे वादा किया था तुमने आओगे दिन ढले, सूरज तुझे कसम है चला जा तले तले।

मैंने निभाया वादा, तुम भी तो निभाना। अरे मैंने निभाया वादा, तुम भी तो निभाना। इस ताज के बागों की खुशबू में चली आना।

वादे तो किए मैंने निभाए नहीं गए। ये भी शेर आप सुने, देखें मजा आएगा आपको। वादे तो किए मैंने निभाए नहीं गए, जब से तुम्हारी बज़्म में आए नहीं गए। आने का वादा तो किया जा सकता है, लेकिन जाने को दिल नहीं चाहता है, जैसे कि आपकी बज़्म से जाया नहीं जाता, क्योंकि दिल भरता नहीं। दो मिनट दो घंटे में गुजर गए, देखिए आप। चलते चलते मोहतरम जनाब दामोदर पांडे की फरमाइश रामनगर से आई हुई है वादे के बारे में, तो क्यों ना उसको हम सुनाते जाएं। वी आर योर होस्ट अफरोज ताज, जॉन कॉलवेल एंड रवि चिरिकुड़ी। 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश। और दिल तो चाहता नहीं है कि अब यहाँ से जाएं, तो मैं कहूँगा वही पुरानी चार लाइनें मुझे याद हैं। दिल नहीं चाहता कि जाएं इस जवां महफिल से हम, अरे दिल नहीं चाहता कि जाएं इस जवां महफिल से हम, क्या करें ताज और भी वादे निभाने हैं मगर, जा रहे हैं आपकी महफिल से इस उम्मीद पर, फिर बुलाओगे हमें तुम अपनी यादें भेज कर। See you later, alligator, in a while, crocodile, keep in touch, magar much. Mohabbat, zindabad.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: हम सब दिवाली इज ब्रिंगिंग अलाइव द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड यू डोंट वांट टू मिस इट। Get ready for an unforgettable celebration of Indian culture featuring spectacular performances, delicious food, exciting shopping, family fun, and so much more. Bring your family, bring your friends, and come experience the magic of Hum Sub Diwali. And calling all musicians, composers, and creative talents. Could you create the sound of Hum Sub? Enter our exciting Hum Sub theme song composition competition and let your music become part of the Hum Sub story. For complete details about the competition and Hum Sub Diwali, visit humsub.org.

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

ती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

यार जया बच्चन इज वेरी सीनियर और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नजर आती है मुझे तो हर वक्त। वो उनसे बच के रहना चाहिए। अभी उन्होंने कुछ कमेंट किया है अक्षय कुमार की एक फिल्म को लेकर, जिसमें अक्षय ने बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही अमेजिंगली उनका रिस्पॉन्स दिया है। आई वुड रियली लाइक यू टू नो अबाउट दिस। यू नो This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And yes, Akshay Kumar responds to criticism on his film like Toilet, एक प्रेम कथा। कहते हैं किसने क्रिटिसाइज किया होगा तो वो कोई बेवकूफ ही होगा। मैंने पैडमैन बनाई है, आप ही बता दीजिए कि टॉयलेट एक प्रेम कथा एयरलिफ्ट है, केसरी वन है, टू है, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, तो कि बेवकूफ ही तो कोई बेवकूफ ही होगा जो क्रिटिसाइज किया होगा। और एक फिल्म है जो कि लोगों को बहुत सारी चीजें बताती है, समझाती है, कोई भी फिल्म हो तो मुझे नहीं लगता किसी ने क्रिटिसाइज किया होगा। व्हेन मेंशनड अबाउट द क्रिटिकल रिमार्क बाय जया बच्चन ही सेड, अब उन्होंने बोला होगा तो सही बोला होगा। अगर टॉयलेट एक प्रेम कथा एक ऐसी फिल्म है जिससे बना के मैंने कोई गलत काम किया है तो शायद वो सही होगा। सी दिस शोज कि यार अगर आपके बड़े कुछ कह रहे हैं, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो, इंडिया में यू हैव टू एग्री कि आप बड़े ने जो कह दिया पत्थर की लकीर है, सही कह रहे हैं वो, भले ही वो गलत क्यों ना हो। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, यू नो। वेल, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फिल्मी स्टोरीज ओनली ऑन नाइन।

रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स। नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

इमरान हाशमी को हम सीरियल किसर का टैग दे के रखे हैं, बट चलिए जानते हैं कि क्या ये टैग इमरान हाशमी को पसंद आता है, ही इज प्राउड अबाउट दिस और नॉट। This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know what? Imran Hashmi shared that he was once annoyed by the serial kisser tag, which overshadowed his effort to be seen as a serious actor. During a chat with Ranveer Alabadia, he admitted getting annoyed with serial kisser tag. He said, "There was a time when I got a little bit annoyed when I wanted people to take me slightly seriously. See, a large part of my career 2003 to 2012 is छवि को इस तरह निचोड़ा गया था कि वो एक लेबल बन गया था, वो मार्केटिंग में इस्तेमाल किया जाता था, हर फिल्म में बिना वजह चीजें डाली जाती थी और मीडिया में भी जब आता था कि एक टैग लाइन तो मेरे नाम से पहले वो टैग आता था, सीरियल किस्सा। दिस द शो टाइम एक्टर एडेड एंड दिस इज माई ओन गिफ्ट टू माई सेल्फ, सो आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन एल्स, बट वॉट हैपन्स जस्ट वेन यू क्रॉस दैट फेस वेयर दोज फिल्म्स गो ऑन एंड एवरीथिंग हैपन्स, देन यू वॉन्ट टू गो टू योर नेक्स्ट फेज, यू वॉन्ट टू बी टेकन सीरियसली एज एन एक्टर, यू ट्राई टू डू दोज फिल्म्स वेयर योर रेंज इज विजिबल टू पीपल, बट आफ्टर सीइंग दैट दे अगेन कम बैक टू द सेम टैग एंड से देर वॉज नो सच सीन्स इन दिस टैग। मिल जाए यार किसी को तो फिर नहीं अच्छा लगता ना, फिर तो वो एकदम टाइपकास्ट हो जाते हैं कि एक बॉक्स में फिट कर दिया गया हो। इस टर्म को आप बहुत सुनते होंगे बहुत बार, इट्स द सेम थिंग, यू नो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फिल्मी स्टोरीज। आई विल

बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

0: had to use the budget with her staff every 2 weeks. This is Bollywood Bliss with Bharti on your tune frequency Naira. Vicky Kaushal says, सबसे मजेदार एक्सपीरियंस होता है घर पे वो कई बार हर हफ्ते 10-15 दिन में वो पूरे स्टाफ को इकट्ठा बजट पर बिठाती है. कहती है हमें बताओ महीना का खर्चा किधर कैसे क्या हुआ. When the discussion happens, मुझे बड़ा मजा आता है. मैं ऑडियंस पॉपकॉर्न लेके बैठ जाता हूँ कि ये सही चल रहा है. आई थिंक कैटरीना इज द स्वीटेस्ट एंड काइंडेस्ट एंड अमेजिंग पर्सन. और विकी भी उन्हें बड़े बखूबी संभाल कर रखते हैं यार. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वॉच देम अलोंग गेटिंग अलोंग एंड बींग टूगेदर. इट्स अमेजिंग. और ये बजट वाली प्लानिंग बड़ी अच्छी है. नहीं वैसे भी हमारे घर की औरतें बजट को लेकर चलना घर के या फिर घर की चीज़ों को मेंटेन कैसे करना बेस्ट करती हैं. आई डोंट थिंक एनी काइंड ऑफ मैन कैन मैनेज दैट थिंग. इट्स अमेजिंग राइट. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. आई विल बी बैक ओनली ऑन नायरा.
1: रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स.
2: भक्ति धाम राली ब्रिंग्स यू चांदनी रास 2026 विद रेडियो नायरा एज मीडिया पार्टनर एंड को स्पॉन्सर. वेयर व्हाइट, डांस अंडर द चांदनी, सेलिब्रेट टुगेदर. एंजॉय गरबा एंड डांडिया विद डीजे रौनक. फेस्टिव शॉपिंग विद क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड गिफ्ट्स, प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेस्टिव बाइट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेडिशनल दूध पोहा. Join us Saturday, October 24th at Net Sports Morrisville. Doors open at 7 p.m. Garba starts at 8 p.m. Vendors are also welcome to showcase their products and services at special community-friendly rates. For vendor details, please contact Hemal Desai or Ripal Parikh at 919-610-4194. For tickets and event details, visit bhaktidhamrally.org and click on Chandni Ras 2026. You can also find Chandni Ras tickets on zephy.com.
1: Aap sun rahe hain Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. Pakka desi, pakka local.

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Have you heard that song, समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो? It's so fun lyrics, right? इसके बारे में, इसके मेकिंग को लेकर खुद ओजी स्टार ने कुछ कहा है, चलिए जानते हैं. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नारा. एंड यू नो व्हाट, जीनत अमान रिसेंटली टुक टू इंस्टाग्राम टू शेयर सम फन बिहाइंड द सीन्स ट्रिविया अबाउट हर आइकॉनिक सॉन्ग समंदर में नहा के विद अमिताभ बच्चन. द ट्रॉपिकल फैंटेसी स्टाइल नंबर ओज्ड स्टीमी रोमांस. Zeenat stunned in a bold white outfit with a hint of midriff, while Amitabh sported a white ensemble layered with a blue and yellow striped shirt. Zeenat ji wrote, "Oof, I'll be candid, this is a bit of greatest post bought one by this summer. It's just so damn hot, the weather, I mean. Though I won't be too coy to say that Mr. Bachchan and I romancing to those salty lyrics are quite sizzling too. Director producer Ramesh Behel's Pukar was a blast to shoot. It's anti-colonial and rapping, underpinning excellent cast and catchy songs were what drew me to that script. So there I was in a titillating white outfit with a bit of midriff on display rolling around in the surf while Mr. Bachchan pranced around me like an Eden bird of paradise." I like how Zeenat ji always gives some behind the scenes type of content in her Instagram feed. Bahut maza aata hai yaar ye baatein janne mein, like how old cinema was made, right? Stay tuned

कि कैसे स्त्री की जो कास्टिंग है वो हुई श्रद्धा कपूर, हाउ शी केम ऑन बोर्ड. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know what? Director Amar Kaushik once revealed that Shraddha Kapoor landed her role in Stree because of her laugh. He joked it resembled that of a chudail, making her the ideal choice for the character. She can do anything, you know. वो बहुत खूबसूरत सी परी भी बन सकती हैं. वो even मतलब चुड़ैल भूतनी भी बन सकती है. She has proven. और इतनी खूबसूरत hot भूतनी बनी है वो स्त्री 2 में. Like भूतनी से प्यार हो चार हो भी गया था. Lead role को भूतनी से ही तो प्यार होता है उस फिल्म में. I was like, यार ऐसी भूतनी हो तो फिर लड़कियों को भी अफेक्शन हो जाए उनसे. लड़के तो खैर पूछो मत आप. बाय द वे, वी हैव नॉट वॉच द फिल्म ना अभी तक के. प्लीज गो वॉच यार, बड़े मजे की फिल्म है. अगर आपको कुछ लाइट ऐसे फन देखना है देन इट इज कम्प्लीटली परफेक्ट चॉइस फॉर यू. सो नाउ एंजॉय ऑल द अपकमिंग सॉन्ग्स टू, बिकॉज आने वाले गानों के उस पर अभी बहुत सारी बातें करनी है.

बहुत ज़्यादा सुंदर है, अब उसको बहुत कुछ पता है. इफ़ दे हैव समथिंग स्पेशल ना, देर इज़ अ स्लाइट एटीट्यूड जो उनमें आता है या फिर नेचुरली इनबिल्ट हो जाता है. आई डोंट नो वॉट टू से, हाउ टू पोर्ट्रे दिस, बट या द एटीट्यूड थिंग इज़ देयर, यू नो, एंड वी हैव टू बेयर.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: It's a throwback time when Katrina Kaif gushed over Shah Rukh Khan's knowledge and intellect. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And yes, in 2022 interview, Katrina praised Shah Rukh Khan, calling him incredibly intelligent and always informative. She spoke about their strong equation, highlighting how conversation with him are deeply intellectual. The duo starred together in Jab Tak Hai Jaan, 2012 mein aayi thi ye film, and then Zero Jagah 2018 mein aayi, sharing both great on-screen chemistry and a warm off-screen bond. Wo to dekh kar lagta hai yaar unko ki yaar unki bonding bahut hi zyada achhi aur amazing hai, hai na? बाकी शाहरुख खान से कौन भी इंटिमिडेटेड नहीं होता यार। एवरीवन हु एवर वर्क्स विद हिम गेट इंटिमिडेटेड, राइट? दिस इज द ग्रेट क्वालिटी ऑफ हिम कि वो लोगों को काफी जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं वीकेंड से। चलिए फिलहाल तो सुनिए आने वाले खूबसूरत गाने। आई विल बी बैक ओनली ऑन नायरा।

You know, Sunil Shetty's abs aren't just for show. Turns out there's a tiny new boss baby he's trying to impress. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your Dune Frequency, Naira. And Sunil Shetty recently became a proud Nana as Athiya Shetty and KL Rahul welcomed their baby girl into the world. Embracing this new chapter, he shared the most heartwarming reason behind his abs workout. He said, "I'm 60 plus and the only reason I train my abs is to make sure that I walk straight, I don't hunch, and I don't drag my feet," he said. Speaking about spending time with his granddaughter, he added, "Tomorrow I'll be able to play with my grandchild without having to take a break every 2 seconds because the child's energy is going to be different." He also called her the biggest excitement in his life right now. And honestly, that's the cutest Nana moment ever, right? Ayar, great parents ka hona saath mein and enjoy karna unke saath life is something another thing, right? कितना अच्छा लगता है. आई एम मिसिंग माई नाना नानी नाउ. आई यूज टू बी अ वेरी फेवरेट चाइल्ड ऑफ देम एंड बहुत मस्ती करती थी मैं उनके साथ में. वी यूज टू हैव अ होल डिफरेंट लाइफ टुगेदर. नाउ बड़े होते होते वो लिंक टूट गया है बट आई रियली मिस देम. अब सरकमस्टेंसेस भी ऐसे नहीं है कि मैं उस टाइम को वापस ला पाऊँ या फिर वैसी चीज़ें दोबारा से कर पाऊँ, बट आई रियली रियली मिस देम. आई होप कि उन्हें मैं ये चीज़ बता पाऊँ. मे बी डूइंग अ कॉल विल बी गुड, राइट? सो इट इज़ अ रिमाइंडर फॉर यू टू ऑल्सो कि अगर आपके भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जस्ट मेक श्योर टू कनेक्ट विद देम राइट नाउ एंड लेटर, एंड इफ यू आर बिजी

0: ये इतना आसान नहीं होने वाला, ना ही ये जल्दी पिघलने वाली। तो ठीक है मैडम, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम।
1: सेलफोन
2: चेक,
1: मेकअप
2: चेक,
1: जूस
2: चेक,
1: इडियट
2: चेक,

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माता नाइट्स और मैं हूँ सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। वेल, कैसे चल रही है आज की आपकी इवनिंग? मैं डे फर्स्ट से बोल रहा हूँ कि हर तरफ जो एनर्जी है वो छाई हुई है, क्योंकि बापा का आगमन हो चुका है। हर तरफ गणपति बापा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या, ये चल रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। लाइक यू नो, एनर्जेटिक एंड सुखकर्ता दुखहर्ता बापा जो है, उस हिसाब से माहौल पूरा अच्छे से छाया हुआ है। एंड आज की इवनिंग के बारे में बात करूँ तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। एंड इस प्यार भरे मौसम में एक कप अदरक की चाय मिल

0: Join the Morrisville Chamber of Commerce on Wednesday, October 1st from 4:30 to 6 p.m. for Life Sciences After Hours Unplugged at Horseshoe at the Hub RTP. Network with industry professionals, innovators and leaders and enjoy a lively panel and Q&A on the power of storytelling in life sciences. Visit morrisvillechamber.org to register. Media partner, Radio NIDA.
1: Movie dekhi thi, pav bhaji khai thi. पंजी गए थे
2: रॉन्ग 2 अक्टूबर को गरबा नाइट है अरे भूली गया आ डेट तो याद रखवानी छोए गरबा लवर्स आर यू रेडी ऑन ऑक्टोबर बीजी रिधम अने रास लईने आवे छे गरबा नाइट चनिया चोड़ी अने केडियू रेडी राखो एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल जॉइन अस फ्राइडे ऑक्टोबर 2nd एट 7 PM एट हवेली एपेक्स Dance to the incredible beats of Amruta Manke and Nimesh Nagar with live music, delicious food, family, friends and Raat Bhar Garbani Moj. Early bird tickets only until September 7th.
3: Tickets on Sulekha or check the Rhythm and Ras Flyer on Radio Naira's Facebook, Instagram or RadioNaira.com. One beat, one circle, one community.
4: हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब मेरा नाम है नायाब मिढा एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा एंड गेस व्हाट आई एम ब्रिंगिंग माय शो राजकुमारी माय पोएट्री स्टोरी टेलिंग शो राजकुमारी टू रैले दिस अक्टूबर 2nd कैच मी लाइव एट द गार्नर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर प्रेजेंटेड बाय ओहो प्रोडक्शंस टिकट्स जल्दी जल्दी निकल रहे हैं तो ग्रैब योर्स टुडे थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑलरेडी सी यू देयर थैंक यू सो मच जल्दी मिलते हैं कविताओं के साथ कहानियों के साथ किस्सों के साथ रैली

0: हेलो हाय, कैसे का आप सुन रहे हैं रेडियो नाइट अपर निर्मदा नाइट्स एंड कैरी। शहर की खबर मैं लेके आ रहा हूँ, जहाँ शहर के नेताओं ने पूर्व डाउन टाउन मैनेजर द्वारा खरीदी गई $10 लाख से अधिक की जो संपत्तियाँ हैं वो सुरक्षित और संरक्षित करने का फैसला कर लिया है। इस ज़मीन को बेचने के बजाय अब इसे लोकल रूप में संभाल कर रखा जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है ऐसा कह रहे हैं। एंड $10 लाख से अधिक संपत्ति जो है ये है, मतलब ये काफ़ी अच्छी ह्यूज रकम है, लेकिन इसको जो लोकल रूप से संभालने का जिम्मा उठाया है इट्स लाइक अप टू द मार्क है। एंड मौसम की बात करें तो हल्की मध्यम बारिश और ठंडी हवाओं का दौर जारी है। आज का तापमान करीब 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, इसलिए बाहर निकलते समय आप सावधानी बरते एंड एंजॉय करें। अगला ये गाना,
1: एक चिमणा चिव चिवला माझा साजण जागा झाला हो सूर्य उगवला, एक चिमणा चिव चिवला माझा साजण

आपने गाना गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। एंड सबसे एक खुशखबरी जो है आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो खबर यह है कि एक नई रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश के सबसे बेहतरीन योग्य शहरों की जो यादी है वो जारी हो रखी है, जिसमें रैली का पहला और डरम का दूसरा नंबर आ गया है। सो नथिंग इज लाइक दैट, मतलब रैली एंड डरम, इट्स लाइक फर्स्ट नंबर इज रैली, सेकंड नंबर पे डरम। एंड लाइक अच्छे स्कूल यहाँ पे है, बेहतरीन जो है यहाँ पे हम जी सकते हैं। एंड ट्रायंगल एरिया ने पूरे देश में जो है वो बाजी मार ली है। तो एक बार अपने शहर के लिए तालियां तो डेफिनेटली बनती है यार, मतलब क्या बात है, मजा ही आ गया ये न्यूज सुनने के बाद। रैली एंड डरम, इट्स लाइक नथिंग इज लाइक दैट। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।

0: पहला गाना था वाकई में काफी बेहतरीन, एंड हमारे रैली के एक लोकल हीरो को नेशनल कार्नेगी मेडल मिला है, एंड उन्होंने अपने जान पर खेल पर एक पर्सन को बिजली के तार और आग से बचाया है। ऐसे जाबाज पड़ोसी पर हम सबको फक्र है, ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड यू नो लाइक बहुत सारे लोग तो डरते हैं यार, छोटा मोटा झगड़ा भी अगर होता है तो हम आजकल देखते हैं कि लोग किसी झगड़े में पड़ते नहीं है, लेकिन खुद के जान पे खेल कर किसी को बचाना, ये होते हैं रियल हीरो। इनको ही रियल हीरो का खिताब जो है वो देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एंड आजकल कौन किसी के लिए क्या करता है यार, मतलब कर सकते हैं बहुत कुछ लेकिन लोग करते नहीं है। खुद की जान पर खेलकर किसको बचाना, इट्स लाइक रियल हीरो। तो नायरा करता है आपको सलाम, एंड एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।
1: प्यार है इंडिया से, यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।